उदयन तो बिड़ा हुए तिसनी ने ना हेने ने ना ने ना अरे रे समने ने ना अरे क्वति वाले बाबी गलेन अरव एम बलि निमसियो दे ना या वो रशद दाई तवासा होन या वो तो न तो दाई यह दबेन दे आया तो न तो शुभ या वो गलेन अरव है शस आहोना हेनेन उदयन दाई ना इतने सरीव दाई था तिब दाई ने तरेनी दाई था आतिब दी मरहनी तरेनी चल दाई था तिब दाते ना दाई था आती दी में एम बलिब निम्सियो दी एम बलिब दीतित अरे मिड्डा अफरहा गलेन अरव ररे समनई हेनिन अमसे हो आदि दाने अदे तून इन इन सिरे का तित्ते न ते दाई अल्फाद ले अदने ते दाई कक रिसनई कक तवासनई उम्बतियो एम बलिब दिया नेद

धन तो बिड़ावे अरे ए ना ओकना तो ना तुवे दोरनी ने ना तिम बतियो एम बलिव दिया ने यत आओ उनु धई ही दावदाये नो इन निसरे का तवामे नो तवाये नो इन निसरे का एक ना अरे कतीने अरे ते कतीने इम बरे रशद बरा रशद आको रशद एक ना दाए ब्रंशी दो दाए था आती इतरशिद ना अमाग रशी दो अमाग था आती इतरशिद ना तो ना तो दाए थिन निसरी ओकना बेत तो ना ती दाए इन निसरे का ते न ते दाए सोया ना ते न ते दाए रहसाना दिया ओकना नेत आओ ऊतक का गिंदिया थबे थी तो दूर अरे हुआ ओरिया हुआ वह बिन तेरा बंदे इंदी तो दूर अरे तवास्ते नहीं आती सो की ना वह बिन रिश्ते नहीं आया इन बरे कस्से दाए ती सो की ना तो दूर अरे भी बरी एक तोले हाफी बिथाएक ओरिया भी कोना एक इंदोर ऊ सिमाए कुड़ी नी तोले रिश्ते नहीं आया ना अरे ले तवाया ना फगरा फगरा बके ना दाई था आती दाया ना ए दाई ओ धई वविन कायक न हमोई साना इदादिस कायक न रिशिद ना उत्था आती यर सोतनियो ओ सो दाई उन ऊ सुंबरू उगनी इबदायती लेत लेत बित काय देवनो हैया केतित है सकेन बेतुनाती दा हेनिन दाई न यर निसरेव यार अरेना अरित अरितेना बराक नहन धयो नानो को बेतुनाती दा दाई न निसरी ओकना दाई न तवायाना यरेक तेन अति दाई ओसदिक कतियक सोयाना हमोइसा कतियक सोयाना थदारित कतियक सोयाना ओसदिक कतियक सोयाना अरे यार एकना बा मागना गले करावे ददीना गले कराव इप्तिकेकना ओरे रुआ तित्तेन एंबते तिदाई इप्तिकेकना तवायाना दीतित सोतनी आया तो और तिकतियक उसानो खमोइसी तिंदी आया और कतियक तुकातोक दाए बगुनो खोई दिया तिंदी आया उम्बतु कस्तु यार ही दद्दे तवाईत ही द दाईत इम्बते कस्ते सकेनेक यार अकन लही तेरा शिद नोकना असे ही सकेनो तो बुड़ावी उधायून इन इन इन दाई न निसरी वोकना तू न तु दाईत दीम दाईत ते कतियो बेन ओदोर तिशबोबी तिशबूब हुआ आ थदरे हुआ आन फगरंदी हुआ ओरिया हुआ तित्तान इम्बता यारे तवाईत इन यार उबोई सकेनो लहित लहित बित का यार गरोयो इराशिद ना बरयोक न दाई ना दाएन वरी ने दा ना दाएन बेत तुनाती दाई इन इन इन असासक धैयो नहरिव असासक उन नहरुए उन उधई असासक दाई दाई थाय आती दाई ने तो न नहरिव इन यारान व इन सिरकायान इन बरा रशदो नु रशद दाई तवानेक शुभोबी ऊतक सूर्य दबाब कक दियाव फेराई दो बनु इक्तिहन रे उबारिशा तवामीन मलहे तरमू मनु इक्तिहन ना तवा का नहत आये दियाव मलहे उत मलहे सो किन्ना तरमूमा हुआ मलही हुआ इंदरे सो किन्ना रशद उकना गार रे वंके आक इन सिरिका हुआ यार आकना रशद बेत तुनाती दाय हिनिन इन यारान दाएब दाईने थरेनी दाई थाय आतिब दाईने बका लहित लहित बितकाई हिनिन है निमाडित अमसे बारूक उकना उक तिकते ना आन उन निसरिका दिशबोबी नहीं भवाते कतेक भवा बहवी ना भवा उकना हवासा तेदने यारे बर हर दीते हवा हवा न दीना थवा उदाई भवासा ना भवा बहवी ना अरे उकना बागुस्सा ना भवा उकना तो नंबर तो दाए बे दिशबोब तेदने निजाम दही तीन हमसे ना निजाम तिंदियक और मर्दोर फितेराया मर्दोर महसाया मर दूर देरा रात इंदी आया तुम अरे तोकन तु दाईत रिसेतित का तोन आया तुम बतो तोन अमसे आया दीतित तोकन अमसे तिनी हुए तुम्हारे लही तुए तिनी हुआया तू ना ना ना तु तिंदियक ओकन तुबनी तु बरी तु उन उबाशर हुआ अदे हुआ दाई अक्ति अकें काबज वे तोना ती दा इत्थाया ती दाईत हिनिन निसरी ओकना उन दाब इन हिनिन गाना उन्ने तु तुबड़ावे ती उगनो हिप ईदी ने तया ना ना तो तिंदियक ओन उन्हें सिरिक अना और बर्राब हवाया हल्लान हल्लान का एन बक दिफा और दिफा दी तित का बर्राब का सुके फारा दी मा सुके कित फेरा ओदोर हवा अरवाब इकतिये हवास्तिनिया हवा अरे अरवाब भी काय दोर दिवा तिंदी आया जमन एनो राहाते कहा तिंदी आया अरे अना और दिफात मल्ला मर दोर आ तिंदी आया हवा ओकना यार इदाई हुआ दाए हवा हुआ बरोर हस्तिनी थवास्तिनी आया सो और उन धायून दमन बेन आई
maashallaahe imandaraahinawo un wawli ihiino been odor daayi taay aatiib ihiin dha hase henin dhahoynihay udamaan usuure bakaad ereb udahe mindar eaanay tumadiina eaano taya tusuure dhakaad tereb bettunaatiida nazamteene toona zamaneknawa hawaawa teerawa imbare nizam dayted ine toona umbatu arriwookna tadriise katiyek allamteni aya teena tidaayid tisookiinaaya teena tidaayid resteni aya henin kastuutuni sariweetukna daayi badaayin daayi tayaatib badaayin miyaadib imbalib niyadookna bettunaatiida shibobna yariyokna day shibobna yarek ikna nakumanaayaana nisirik ukna unakumana henin nisariwi naagwadibu tednek nisirik ukna unuudhay ore fira sigiya baksaka eedn or ukna hirere inu bak oguruma shishtiniyay ana oru mbaruk daywa tindiya idaayif tindiyaya are uknaayuk inakumanaaya kasiistiniyaya naanaatu tindiyek malla udhayida nakumanaayine kaabu udhayida ishibobe kaabu udhayida masiguwa daayinawa tawaayine kaabu henin bettunaatiida in yar imbalib tudayneyade yaramba ishibubna ba iirshidnahoon lahit ba itfeyiknahoon daayi taatib ba daayin uud hareerheeno maashallah uwor naa abunaanaay orkeyke maashallahe daay oru daayi tarbiyaay rabbiyaaba daayi soy sooyaaba ba iyaadna miyaadib henin imbalib niyadokna bettunaatiida shibobna ugaroyokna day shibobna yareyokna day shibobna udhayida shibobna ushawiida shibobna imbate kastehininni sariweetukna naato ako uttunaatiida udhayun tubidhawi iheeni miinika daayib daayineed areeni bettunaatiida shalla daayib daateena shalla daayi taayaatib daateena eene nistirhawknane

तहुं तो बिड़ावी अरे ए ना ओकना तू ना तुवे दुरनी ने नाती बम बतियो एम बल इवदी है नियत आओ उन उधई ही दावदायनो इन निसरे का तवामेनो तवायनो इन निसरे का एक न अरे कतीने अरे ते कतीने इम बरे रशद बरा रशद आको रशद एक न दाए ब्रंशीदो दाई था आती इतरशिदना अमा ग्रशीदो अमा था आती इतरशिदना तो न तो दाई थिने निसरी ओकना बेत तो नाती दाए इन निसरे का ते न ते दाई सोया ना ते न ते दाई रहसा न दिया ओकना नेत आओ ऊतक का गिंदिया इत्था बैती तो दूरारे हुआ ओरिया हुआ वह बिन तेरा बंदे इंदी तो दूरारे तवास्ते नी आती सो कीना वह बिन रिस्ते नी आया इन बरे कस्से दाए ती सो कीना तो दूरारे बीबरी एक तोले हाफी बिथाई एक ओरिया बी कोना एक इंदोर ऊसे माए कुड़ी नी तोले रिस्ते नी आया ना अरे ले तवाया ना फगरा फगरा अके ना दाई था आती दाया ना इ दाई ओ धई युवन कायक ना हमोई साना इधर दिस कायक ना रिशिद ना उत्था आती यर सोतनियो ओ सो दाई उन ऊस उम्बरु उगनी इब्दाये ती लेत लेत बित काय देविनो हाई या केती हाई सकेन बेत तुनाती दा हेनिन दाई ने यर निसरिव यार अरे ना अरित अरित्ते ना बराक नहन धायो नानो अको बेत तुनाती दा दाई ने निसरिव ओकना दाई ने तवाया ना यारेक तो न ती दाई उस दिक कतियक सोया ना हमोइसा कतियक सोया ना थदारित कतियक सोया ना उस दिक कतियक सोया ना अरे यार एक न बा मागना गले करवे ददीना गले करव इप्तिकेक न ओरे रुआ ति तेन बते ति दाई इप्तिकेक न तवाया न दीति सोत नि आया तो और तिकतियक उसनो खमोइसी तिंदी आया और कतियक तुकातो दाए बगुनो खोई दिया तिंदी आया उम्बतु कस्तु यार ही दद्दे तवाई ही दाई इम्बते कस्ते सकेने यार अकन लही तेरा शिद नोकना असे ही सकेनो तो बुढ़ावी उधायून इन्हें इन दाई ने निसरी वोकना तू न तो दाई दी म दाई ते कतियो वे नोदोर तिशबोबी तुशाबु बुआ आन थदरे हुआ आन फगरंदी हुआ ओरिया हुआ तित्ताने इम्बता यारे तवाई इन यार उबोई सकेनो लहित लहित बित का यार गरोयो इराशिद ना बरेोक न दाई ना दाएन वरी ने दाना दाएन बेत तुनाती दाए इन्हें इन असासक धैयो नेहरिव असासक उन्हें हरुए उन उधई असासक दाई दाई थाय आती दाए ने तो न नेहरिव इन यारान हुआ इन सिरकायान इन बरा रशदो नु रशद दाए तवाने शुभोबी ऊतक सूर्य दबाब कक दिया फेराई दो बनु इकती हन रे उबार शाद तवामीन मलहे तरमु मनु इकती हन ना तवा कान हत आये दिया मलहे उत मलहे सो किन्ना तरमुमा हुआ मलहे हुआ इंदरे सो किन्ना रशद उकना गार रे वंग के आके इन सरेका हुआ यार आकना रशद बे तुनाती दा हिनेन इन आरान दाए दाईने थरेनी दाई थाय आती दाईने बका लहित लहित बितकाय हिनेन हिने मार्डेट हमसे बारूक उकना उक तिकते ना आन उन नसरे का दिशबोवी नहीं भवाते कतेक भवा बहवी ना भवा उकना हवासा तेरने यारे बर हर दीते हवा हवा न दीना थवा उदाई भवासा ना भवा बहवी ना अरे उकना बागुस्सा ना भवा उकना तो नंबर तो दाए बे दिशबोव तेरने निजाम दही तीन हमसे ना निजाम तिंदिये और मर दोर फितेराया मर दोर महसाया मर दोर देरा रात इंदी आया तुम अरे तोकन तु दाईत रिसेतित का तोन आया तुम बतो तोन अमसे आया दीतित तोकन अमसे तिनी हुए तुम्हारे लही तुए तिनी हुआया तू ना ना ना तु तिंदी एक ओकन तुबनी तु बरी तु उन उबाशर हुआ अदे हुआ दाई अक्ते अकें काबज वे तो ना थी दा इत्था या ते दाईत हिनिन निसरी ओकना उन दाब इन हिनिन गाना उन्ने तु तुबड़ावे ती उगनो हिप ईदी ने ते ना ना तो तिंदी एक ओ नो ने सिरिक अना ओरो बर्राब हवाया हल्लान हल्लान का एन बक दिफा ओरे दिफा दी तित का बर्राब का सुके फारा दी मा सुके कित फेरा ओ दोर हवा अरवाब इकते हवा स्तेनी वो हवा अरे अरवाब भी काए दोर दिवा तिंदी आया जमन एनो राहाते कहा तिंदी आया अरे अना ओरो दिफात मल्ला मर दोर आ तिंदी आया वो हवा ओकना यार इदाई हुआ दाए हवा हुआ बरोर हिस्तीनी आई थवास्तीनी आया सूर उन धायून दमन बेन आई
maashallaahe imandaraahinawo oon wawli ihiino been odor daayi taay aatiib ihiin dhaahase meynin dhahoynihaye udamaan usuure bakaad irib wudahe mindar eyaanay tumadiina eyaano taya tusuure dhakaad terib bettunaatiida nazamteene toona zamanekinawo bahawaawwa teerawo imbare nizaam dayted ine toona umbatu arriwookna tadriise katiyek allamteni aya teena tidaayid tisookiinaaya teena tidaayid resteni aya henin kastuutun sariweetukna daayib badaayin daayi tayaatib badaayin niyaadib imbalib niyadookna bettunaatiida shiboobna yariyokna day shiboobna yarek ikna nakumanaayaana nisirik ukna unakumana henin nisariwi naagwadiibu tednek nisirik ukna un udhay orey fira sigiya baksaka eedn or ukna hirere inu bak uguruma shiishtiniyayt ana oru mbaruk daayiwaatindiya idaayiftindiyaaya are uknaayuk inakumanaaya kasiistiniyaaya naanaatutindiyek malla udhayida nakumanaayine kaabu udhayida ishiboobe kaabu udhayida masiguwa daayinawa tawaayine kaabu henin bettunaatiida in yar imbaliptudayneyade yaramba ishibubna ba iirshidnahoon lahit ba itfeyeknahoon daayi taatib ba daayin uudhaareerheeno maashallah uor naa abunaanaay or keeke maashallah daay oru daayi tarbiyaay rabbiaaba daayi soysooyaaba ba iyaadnamiyaadib henin imbalibniyadokna bettunaatiida shiboobna ugaroyokna day shiboobna yareyokna day shiboobna udhayida shiboobna ishawiida shiboobna imbate kaste heninni sariweetokna naato ako uttunaatiida udhayun tubidhawi eheeni miinika daayib daayineed areeni bettunaatiida shalla daayib daateena shalla daayi tayaatib daateena eene nistirahoknane